0: भगवान तुम्हारे भी रक्षक है।
1: यू एंड योर इंडियन भगवान, इंडियन स्टाइल।